सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ईमानदार दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहब सतो चंडिया साहेब दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलारे।

अजनानु गुरु गोविंद सिंह जी अकाल पुरख जी साहिब दरबार में तुर दरबार सतनाम से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तेरे दरबार सब देते कर नमस्कार दूर नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जग मग ज्योति विराज

0: तेन जारी लिखी के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को नाचत फिरत मोर बांधत करत जोर दान नियन बांधत करि करत है जने का सब कलन करत है पत दे जे जे जब नरसुर भव भूम को प्रवित कर राजा भव भूम से बसे तब सियाद ब्रह्मा से न पे बचा जित पर सिया को महाराज से तब से न दे संत है ज्ञान से भी न काल भंग है नीत खत जब मन की चौकरी रे राज करत है चौकरी फिर आई करत है। एक से भय एक भय एक फेर छय राम जित कर गए ये अवतार भी है लग है रमना रे समझ दे ले दे रहो पुराण के दर्शन व्रत के सब में दे के होए होए पिता के दर्शन के होए होए पिता मन दी मदार करते अस ने को मामल दी के मदार अवतार ने काल के से है और पीर रे के काल करते गए ना पर भी दे रो तू मन के फेर बल में मिल है जोग लद राजा दी बड़े बड़े छत्र के जरी चिपर रही कई बड़ा कई गो श्रद्धा दी छत्र दी के छत्र बड़ दी राजा ने कदा पत कर कर बड़े बड़े बड़े राजा मत कदा पत को दल बड़े बड़े बड़े कदा को तलत है। मान से मही बहुत लीप कर सदा नारी वन को मन में भी बहुत दंड को कर दो दान से दिल से रोक जो धन से मार हाथ दी भोग भोग दो मत भो मन मारी लग को को को मत को से जब कर अनेक तो एक पद दे से को सके अनेक दाने पाड़ दे से को बाबा वाहन अनेक युग एक और वाहन है काक और शेर और देश बीच काक और ज्ञान दे से देश बादान है रहो जे के बाप मैं दिन दिन कर से के नरक है दिन कर से कर से एक संग तो जो किया बजा के मन सब हम ने आज के पर के दिन खबरी न हो पान हार के हम बैठो लगी तारी को हम लोग के कुमार सो अनेक गुण गावरी कुमार सो अनेक गुण गावरी कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पैर लगावे बड़ा दिन कहूं डंड धारी हो तो लोग न बड़ी करारी पंच बार की तरह पुकारे पर सिंध द्वार की तरह पुकारे मार देखता पुकार की कहा मिल जो पता लब रही आसिब जीत के लब बुटा कुठार भी जो मार रही जो बुटा कुठार हम सोयो मार डार बुटे चट कंदार डार डार मार डार मार मार डार ही बुबे नमरक धार डार ही नीले बुबे नचार बार मार भी इन कैसे जान जो बिचार ही कैसे जान को बिचार ही ताब के सहत जो बेपाई है ताब के सहत जो बेपाई है करता करी सोई राज कर
1: ਸਾਰੇ ਗੜੀ ਮੰਡਲ ਉਪਰ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾ ਗਾਵੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ

नमः ताता है नमः ताया ख्याल खंडन दुःख है छेद है अभेद है न दुःख है न छेद है
ਹੈ।

बंधन महीप बंधन महीपान जल महान जल प्रसो करुण प्रसो करुण जल मंत्र पूर्ण जल।

जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो, जिन्हें तो हित आयो,

0: चके चके थलवारों ले बहुत अनंत
1: लाटू मधानियान गह पंखी पौंदिया लैन साह सुवे झाड़ पवाए जंत नान पौंदिया अनंत बंधन बंध पवाए सोए पैक नचे सब कोई नच नच हसे चले सिरोए।

कुंभे बधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बधा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया होए